0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं संत पापलियो 14वें का फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन पेरिस के प्लासे दे कॉनकॉर्डिया में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। अपनी प्यास बुझाने के लिए हम मसीह की ओर आते हैं, जो जीवन जल के स्रोत हैं। वह जल जो हमारी प्यास बुझाती और जीवन को समृद्ध बनाती है। ईश्वर के प्रेम का वह जल जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उडेला गया है। संत पापा ने कहा,
1: La liturgie de la parole de ce jour nous invite à sonder notre cœur.
0: शब्द समारोह की धर्म विधि हमें अपने हृदय के अंदर देखने का निमंत्रण देती है और हमें कहती है, हमारी सबसे गहरी प्यास क्या है? वास्तव में मैं अपने जीवन में क्या खोज रहा हूँ? हम सभी खुशी, प्रेम और परिपूर्णता की कामना करते हैं। हम किस स्रोत से उसकी प्यास बुझाना चाहते हैं? क्या हम भौतिक चीजों से संतुष्ट हैं?

0: संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरित यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द में हैं। कल शाम संत पापा ने लूर्द की माता मरियम के तीर्थ स्थल के ग्रोटो में फ्रांस के लोगों और कलीसिया को कुंवारी मरियम को समर्पित किया। देवियों और सज्जनों, संत पापा लूर्द में हैं। जैसे ही माइक्रोफोन से उद्घोषक ने ये शब्द कहे, भीड़ खुशी से झूम उठी और संत पापा लियो का नाम लेकर पुकारने लगी। हालांकि यह उत्साह गंभीर शांति में बदल गया जब संत पापा लियो 14वें कुछ मिनटों के लिए घुटनों के बल दर्शन स्थल की गुफा में प्रार्थना की। वे धीरे धीरे गुफा के चारों ओर घूमे, दीवारों को छुआ और एक मोमबत्ती जलाई। तब संत पापा ने प्यार से भरी मां के सामने फ्रांस को और कलीसिया को समर्पित किया। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे, सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों, दुख झेल रहे लोगों और शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद संत पापा ने गुफा की मेज पर एक सुनहरा गुलाब रखा। यह एक ऐसा उपहार है जिसे संत पापा पारंपरिक रूप से माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में रखते हैं। अंत में संत पापा ने हे पिता हमारे प्रार्थना की अगुवाई की और अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल फिर से भर गया। अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस के धर्माध्यक्षों के साथ मुलाकात से की। संत पापा लियो कार से करीब 9 बजे लूर्द के महाधर्माध्यक्ष के निवास पहुंचे। मुख्य द्वार पर फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जीन मार्क एवलिन ने संत पापा का स्वागत किया और उन्हें सभागार ले आए। फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद संत पापा ने धर्माध्यक्षों को संबोधित किया। संत पापा ने कहा, मेरे प्यारे धर्माध्यक्ष भाइयों, आपसे इस पवित्र स्थान पर मिलकर मुझे खुशी हो रही है। यह जगह उस गुफा से थोड़ी दूर है जहां कुमारी मरियम ने संत बेरनादेत को दर्शन दिए थे और यहां आप अपनी आम सभा के लिए नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। इस जगह को चुनकर आप स्पष्ट रूप से फ्रांस की कलीसिया को ईश्वर की मां निष्कलंक कुमारी की सुरक्षा में सौंपने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं ताकि वे प्रभु की इच्छा के अनुसार कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सके। सच तो यह है कि यीशु तक पहुंचने का मरियम के माध्यम से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। उनसे जुड़ी हर चीज हमें उनके पुत्र की ओर ले जाती है। इस तरह आप उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो आपको विश्वास के मामले में अपने पूर्वजों से मिली है। एक ऐसी विरासत जो आपके देश में सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत से ही चली आ रही है। सच तो यह है कि यहाँ ईश्वर की माँ के प्रति भक्ति इतनी गहरी हो गई है कि फ्रांस को मरियम का गणराज्य कहा जाने लगा। आपके देश और धन्य कुंवारी मरियम के बीच का यह खास रिश्ता तब एक अनोखे ढंग से जाहिर हुआ जब 10 फरवरी 1638 को फ्रांस को औपचारिक रूप से उन्हें समर्पित किया गया। संत पापा ने कहा कि इसकी एक सुंदर झलक उन्होंने पेरिस के नोटर डैम महागिरजाघर में देखा। संत पापा पियूस 11वें ने स्वर्ग में आरोहित माता मरियम को फ्रांस की संरक्षिका घोषित किया था। संत पापा ने कहा कि फ्रांस में कलीसिया का इतिहास बहुत समृद्ध है। अपने समुदायों और देश का भविष्य बनाने के लिए इसके सुंदर और फलदायी इतिहास से प्रेरणा लेना जरूरी है। कलीसिया ने देश के धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया को देखा है और उसमें योगदान भी दिया है। आज भी यह फ्रांस की संस्कृति, पहचान और दुनिया में इसकी भूमिका का अहम हिस्सा है। इसी वजह से सार्वजनिक जीवन में कलीसिया की आवाज को सुने जाने का पूरा अधिकार है। भले ही उनकी बात हमेशा समझ में न आए, फिर भी उनकी आवाज की जरूरत है। इसलिए संत पापा ने उन्हें उन सभी नेक लोगों के साथ मिलकर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जो इन्हीं मूल्यों को मानते हैं। पेरिस में नोटर डैम महागिरजाघर के फिर से खुलने के मौके पर संत पापा फ्रांसिस ने एक पत्र लिखकर कहा कि बपतिस्मा लेने वालों को अपने विश्वास की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना अब चरवाहे के रूप में आपके मिशन का हिस्सा है, क्योंकि आप फ्रांस की कलीसिया का नवीनीकरण चाहते हैं। संत पापा ने कहा, हम आज तक चली आ रही पवित्रता की अटूट परंपरा के बारे में सोचते हैं, विश्वास की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के काम से कला, साहित्य और विज्ञान का जो विकास हुआ है, इंसान की कभी न छीनी जा सकने वाली अहमियत, उसकी गरिमा और मानव अधिकारों व आज़ादी की रक्षा की जरूरत के बारे में जो गहरी समझ बनी है, और सबसे बढ़कर मिशनरी काम की अद्भुत गति जिसने दुनिया के कोने कोने में अच्छे नतीजे दिए हैं। संत पापा ने कहा, यीशु से मिलने वाला शांति का संदेश तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम फ्रांस और पश्चिम के अन्य देशों में चिंताजनक ध्रुवीकरण, भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में गिरावट तथा हिंसा, असमानता और गरीबी का फिर से बढ़ना देखते हैं। अपने संदेश को विराम देते हुए संत पापा ने कहा, फ्रांस की कलीसिया मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे यकीन है कि फ्रांस की कलीसिया पूरे जोश के साथ यीशु मसीह का संदेश फैलाने और दूसरों को उनसे प्यार करने के लिए प्रेरित करने का अपना मिशन जारी रखेगा। अंत में संत पापा ने उनकी सभा धर्म प्रांत के समुदायों और देश को लूर्द की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंपते हुए खुशी खुशी अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापालियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन 27 सितंबर 2026 को लूर्द के मरियम तीर्थ में पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, आज आप इस धन्य भूमि में खड़ा होते हैं जिसने बहुत सारी कृपाओं को पाया है। यह तीर्थ विश्वास की लौ को आपके घरों और पल्लियों में प्रज्वलित करे। आप लूर्द की सांत्वना को अपने पड़ोसियों, प्रियजनों और पूरे फ्रांस के लोगों के लिए लेकर जाएं। संत पापा ने रविवारीय धर्म विधि हेतु निर्धारित पाठों के आधार पर चिंतन करते हुए कहा, हम कुमारी मरियम के द्वारा संत बेरनदित को दिए गए केंद्रीय संदेश का आज के पाठों में स्पर्श होता पाते हैं। मन परिवर्तन हेतु बुलावा जो हमारे लिए कोमल और आवश्यक दोनों है। सुसमाचार में यीशु दुख की गहरी सच्चाई से हृदयों को देखते हैं जो अपने में बंद हैं। तुमने पश्चाताप नहीं किया क्यों? यह यीशु के हृदय को घायल करता है, क्योंकि ईश्वर अपने संतानों को खोना नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवन पाएं, अपनी आंखें खोलें और उनकी ओर लौटें। पश्चाताप करने का अर्थ उस मार्ग का परित्याग करना जिसमें हम खो गए थे और जीवन की ओर लौटना तथा अपने हृदय को उस खुशी के लिए खोलना जो हम में कभी खत्म नहीं होती है। संत पापा लियो ने कहा कि यीशु हमें सीधे तौर पर पश्चाताप करने हेतु निमंत्रण देते हैं। इसके बारे में संत लूकस हमें कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। इसके साथ ही वे हमारे दृष्टिकोण को भौतिक जीवन से परे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि इस जीवन की खुशी हमारे लिए क्षण भंगुर और अस्थायी है, जो कभी कभी बहुतों की पहुंच से परे होती है, जबकि सच्ची खुशी आशा में सबों के लिए प्रतिज्ञा की गई है और हमें अपने प्रयासों और चुनावों में उसी खुशी को खोजने की जरूरत है। क्या कुंवारी मरियम ने संत बेरनदित से यह नहीं कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी प्रदान करने की प्रतिज्ञा नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया में।
2: La vie éternelle est une promesse solide, certain, que le Seigneur nous fait.
1: मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, वास्तव में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमारे लिए ईश्वर की ओर से की जाती है। संत पापा ने कहा, उसे उन्होंने पहले ही अपने क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए प्राप्त किया है, और बपतिस्मा की कृपा द्वारा वे हर दिन उसे हमारे जीवन की परिपूर्णता में लाते हैं। यह हमारी पहुंच के अंदर है, लेकिन हमें स्वतंत्रता में इसका स्वागत करने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, क्योंकि प्रेम के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। प्रेम के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ख्रीस्त को हाँ कहने के लिए करें, माता मरियम की भांति उनकी कृपा में आश्रित होते हुए। संत पापा ने कहा कि हम उसी आवश्यक परिवर्तन के लिए बुलावा को पाते हैं जिसे मरियम ने यहाँ घोषित किया, पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चाताप। वे इसे 3 बार दोहराती हैं। वे बेरनादेत को इसे कुछ विशेष कार्य में करने को कहती हैं, क्योंकि यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए भी जरूरी है, एक दुनिया के लिए जो अपने में भटक रही है। अतः मानव के हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता है जो स्वयं से शुरू होता है। पश्चाताप प्रेम का कार्य है जो मानव परिवार में एकात्मकता से किया जाता है, संत पापा ने कहा। यह ईश्वर के प्रति प्रेम का कार्य है, क्योंकि हम अपने पापों के कारण उनके हृदय के घावों की चंगाई करने की चाह रखते हैं। यह उन भाई बहनों के लिए प्रेम का कार्य है जो मन फिराव के आह्वान की ओर ध्यान नहीं देते हैं और पापों के कारण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिक विकास हेतु हमें अपने गलतियों को पहचानने की आवश्यकता है, संत पापा लियो ने कहा कि हमारी माता हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी प्रार्थना और पश्चाताप हमें बड़ी आशा से भर देते हैं। कुमारी मरियम हमारे विचारों और हृदयों में परिवर्तन लाती हैं, हमें शांति प्रदान करती हैं। बीमारों की माता के प्रेम और प्रार्थना के द्वारा हम विश्वास के साथ भविष्य की ओर यात्रा करें। आप दुनिया के तूफानों से भयभीत ना हों, क्योंकि ईश्वर की पवित्र माता आपकी यात्रा की देखरेख करती हैं। वह कलिसिया को अपनी कोमल छांव तले रखती हैं, जैसे कि चमकता हुआ भोर का तारा पद चिन्हों के लिए मार्गदर्शक बनता है, जिससे खुशी में वे अपने पुत्र यीशु के संग आपको नया जीवन प्रदान कर सकें।

पोप लियो 14वें ने फ्रांस की पैरिती की यात्रा के तीसरे दिन लूथ के अक्वेल नोत्रदम केंद्र के स्टाफ एवं मरीजों से मुलाकात की। अक्वेल नोत्रदम एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। ग्रोटो के सामने नदी के तट पर स्थित और लगभग 50 कर्मचारियों तथा सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा संचालित यह केंद्र इस पवित्र स्थान की यात्रा पर आने वाले बीमार और बुजुर्ग लोगों को रहने की जगह एवं सहायता प्रदान करता है। स्वागत भाषण और दो कर्मचारियों के साक्ष्य सुनने के बाद संत पापा ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा, लूथ में आपके साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। जहां 150 से भी अधिक सालों से दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री माता मरियम के माध्यम से यीशु को अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफें चढ़ाने आते हैं। सचमुच यहाँ दुर्बलता छिपी नहीं है, बल्कि एक पौत्र मुलाकात की जगह बन जाती है। इस साल तीर्थ यात्रा की प्रेरित विषय वस्तु है, प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। संत पापा ने कहा, यह प्रभु के दूत और मरियम की नजरों के बीच के अनोखे आदान प्रदान को दिखाता है। इस मुलाकात में एक युवा महिला की विनम्रता और उदारता ने ईश्वर को अपने मुक्ति कार्य को पूरा करने दिया। मरियम ने प्रभु को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उन्हें दुनिया को दिया और हम में से हर एक से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ है। संत पापा ने कहा, यह सच्चाई मानव के रूप में हमारी गरिमा की नींव है और यहाँ मरियम हम में से हर एक को एक खास व्यक्ति के रूप में देखती है। जैसा कि संत प्रेरणादित्य ने गुफा में दिव्य दर्शन के दौरान गवाही दी थी, यह ममता में नज़र हमें फिर से याद दिलाती है कि ईश्वर की नज़र में कोई भी अदृश्य नहीं है। पोप ने इसके विपरीत भावना पर खेद प्रकट करते हुए कहा, ऐसे समय में जब समाज के कुछ हिस्से मानव जीवन की गरिमा को नज़रअंदाज करने या आंखें मूंदने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने अंदर और दूसरों में एक सोचने समझने वाला नज़रिया बढ़ाना होगा। यह उन लोगों का नज़रिया है जो जीवन के उसके गहरे अर्थ में देखते हैं, जो उसके मुक्त होने, उसकी खूबसूरती और स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी के उसके बुलावे को समझते हैं। यह उन लोगों का नज़रिया है जो असलियत पर कब्जा करने का दावा नहीं करते, बल्कि उसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। हर चीज़ में सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंब देखते हैं और हर इंसान में उसकी जीती जा

सकती। तब संत पापा ने रोगी भाई बहनों को संबोधित कर कहा, मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों के लिए खास बीमारियों और कभी कभी बहुत अधिक दर्द के कारण आपका भविष्य अंधकार में अनिश्चित एवं बिना उम्मीद के लग सकता है, लेकिन कोई भी मानवीय कानून आपको अपनी गरिमा की निश्चितता कभी खोने नहीं दे सकता। इसके विपरीत मानव की इसी कभी न खोने वाली गरिमा के नाम पर हमें झूठे दया की आड़ में मौत का लालच ठुकराना चाहिए। मौत का कारण बनना कोई साधारण बात नहीं है। पोप ने इच्छा मृत्यु के कानून का विरोध करते हुए कहा, जो कानूनी है जरूरी नहीं है कि वह नैतिक भी हो। इसके बाद संत पापा ने दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुए कहा, यहाँ लूट में रोगियों और उम्मीद के शहर में मैं स्वास्थ्य देखभाल के पूरे समुदाय से अपील करता हूँ कि आप अपने काम के गहरे अर्थ को याद रखें, जो कि एक पीड़ित इंसान की देखभाल करना है, ना कि उसे खत्म करना। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जीवन के उत्साही सेवक बने। मैं आप सभी को प्रभु की माता के ममतामय स्नेह को सिपोर्ट करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त से हमारे लिए सांत्वना प्राप्त करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। और इसके बाद आज पोप का अंतिम कार्यक्रम होगा शाम को लूर्द की माता मरियम के ग्रोटो में रोजरी माला विनती। कल उनके कार्यक्रम मेट्स में होंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं संत पापलियो चौदहवें का फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांस की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन पेरिस के प्लासे दे कॉनकॉर्डिया में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। अपनी प्यास बुझाने के लिए हम मसीह की ओर आते हैं, जो जीवन जल के स्रोत हैं। वह जल जो हमारी प्यास बुझाती और जीवन को समृद्ध बनाती है। ईश्वर के प्रेम का वह जल जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उडेला गया है। संत पापा ने कहा,
1: La liturgie de la parole de ce jour nous invite à sonder notre cœur.
0: शब्द समारोह की धर्म विधि हमें अपने हृदय के अंदर देखने का निमंत्रण देती है और हमें कहती है, हमारी सबसे गहरी प्यास क्या है? वास्तव में मैं अपने जीवन में क्या खोज रहा हूँ? हम सभी खुशी, प्रेम और परिपूर्णता की कामना करते हैं। हम किस स्रोत से उसकी प्यास बुझाना चाहते हैं? क्या हम भौतिक चीजों से संतुष्ट हैं?

0: संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरित यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द में है। कल शाम संत पापा ने लूर्द की माता मरियम के तीर्थ स्थल के ग्रोटो में फ्रांस के लोगों और कलीसिया को कुंवारी मरियम को समर्पित किया। देवियों और सज्जनों, संत पापा लूर्द में है। जैसे ही माइक्रोफोन से उद्घोषक ने ये शब्द कहे, भीड़ खुशी से झूम उठी और संत पापा लियो का नाम लेकर पुकारने लगी। हालांकि यह उत्साह गंभीर शांति में बदल गया जब संत पापा लियो 14वें कुछ मिनटों के लिए घुटनों के बल दर्शन स्थल की गुफा में प्रार्थना की। वे धीरे धीरे गुफा के चारों ओर घूमे, दीवारों को छुआ और एक मोमबत्ती जलाई। तब संत पापा ने प्यार से भरी मां के सामने फ्रांस को और कलीसिया को समर्पित किया। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे, सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों, दुख झेल रहे लोगों और शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद संत पापा ने गुफा की मेज पर एक सुनहरा गुलाब रखा। यह एक ऐसा उपहार है जिसे संत पापा पारंपरिक रूप से माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में रखते हैं। अंत में संत पापा ने हे पिता हमारे प्रार्थना की अगुवाई की और अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल फिर से भर गया। अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस के धर्माध्यक्षों के साथ मुलाकात से की। संत पापा लियो कार से करीब 9 बजे लूर्द के महाधर्माध्यक्ष के निवास पहुंचे। मुख्य द्वार पर फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जीन मार्क एवलिन ने संत पापा का स्वागत किया और उन्हें सभागार ले आए। फ्रेंच धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के स्वागत भाषण के बाद संत पापा ने धर्माध्यक्षों को संबोधित किया। संत पापा ने कहा, मेरे प्यारे धर्माध्यक्ष भाइयों, आपसे इस पवित्र स्थान पर मिलकर मुझे खुशी हो रही है। यह जगह उस गुफा से थोड़ी दूर है जहां कुमारी मरियम ने संत बेरनादेत को दर्शन दिए थे और यहां आप अपनी आम सभा के लिए नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। इस जगह को चुनकर आप स्पष्ट रूप से फ्रांस की कलीसिया को ईश्वर की मां निष्कलंक कुमारी की सुरक्षा में सौंपने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, ताकि वे प्रभु की इच्छा के अनुसार कलीसिया का सही मार्गदर्शन कर सके। सच तो यह है कि यीशु तक पहुंचने का मरियम के माध्यम से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। उनसे जुड़ी हर चीज हमें उनके पुत्र की ओर ले जाती है। इस तरह आप उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं जो आपको विश्वास के मामले में अपने पूर्वजों से मिली है, एक ऐसी विरासत जो आपके देश में सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत से ही चली आ रही है। सच तो यह है कि यहाँ ईश्वर की माँ के प्रति भक्ति इतनी गहरी हो गई है कि फ्रांस को मरियम का गणराज्य कहा जाने लगा। आपके देश और धन्य कुंवारी मरियम के बीच का यह खास रिश्ता तब एक अनोखे ढंग से जाहिर हुआ जब 10 फरवरी 1638 को फ्रांस को औपचारिक रूप से उन्हें समर्पित किया गया। संत पापा ने कहा कि इसकी एक सुंदर झलक उन्होंने पेरिस के नोटर डैम महागिरजाघर में देखा। संत पापा पियूस 11वें ने स्वर्ग में आरोहित माता मरियम को फ्रांस की संरक्षिका घोषित किया था। संत पापा ने कहा कि फ्रांस में कलीसिया का इतिहास बहुत समृद्ध है। अपने समुदायों और देश का भविष्य बनाने के लिए इसके सुंदर और फलदायी इतिहास से प्रेरणा लेना जरूरी है। कलीसिया ने देश के धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया को देखा है और उसमें योगदान भी दिया है। आज भी यह फ्रांस की संस्कृति, पहचान और दुनिया में इसकी भूमिका का अहम हिस्सा है। इसी वजह से सार्वजनिक जीवन में कलीसिया की आवाज को सुने जाने का पूरा अधिकार है। भले ही उनकी बात हमेशा समझ में न आए, फिर भी उनकी आवाज की जरूरत है। इसलिए संत पापा ने उन्हें उन सभी नेक लोगों के साथ मिलकर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जो इन्हीं मूल्यों को मानते हैं। पेरिस में नोटर डैम महागिरजाघर के फिर से खुलने के मौके पर संत पापा फ्रांसिस ने एक पत्र लिखकर कहा कि बपतिस्मा लेने वालों को अपने विश्वास की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना अब चरवाहे के रूप में आपके मिशन का हिस्सा है, क्योंकि आप फ्रांस की कलीसिया का नवीनीकरण चाहते हैं। संत पापा ने कहा, हम आज तक चली आ रही पवित्रता की अटूट परंपरा के बारे में सोचते हैं। विश्वास की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के काम से कला, साहित्य और विज्ञान का जो विकास हुआ है, इंसान की कभी न छीनी जा सकने वाली अहमियत, उसकी गरिमा और मानव अधिकारों व आजादी की रक्षा की जरूरत के बारे में जो गहरी समझ बनी है, और सबसे बढ़कर मिशनरी काम की अद्भुत गति जिसने दुनिया के कोने कोने में अच्छे नतीजे दिए हैं। संत पापा ने कहा, यीशु से मिलने वाला शांति का संदेश तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम फ्रांस और पश्चिम के अन्य देशों में चिंताजनक ध्रुवीकरण, भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में गिरावट तथा हिंसा, असमानता और गरीबी का फिर से बढ़ना देखते हैं। अपने संदेश को विराम देते हुए संत पापा ने कहा, फ्रांस की कलीसिया मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे यकीन है कि फ्रांस की कलीसिया पूरे जोश के साथ यीशु मसीह का संदेश फैलाने और दूसरों को उनसे प्यार करने के लिए प्रेरित करने का अपना मिशन जारी रखेगा। अंत में संत पापा ने उनकी सभा धर्म प्रांत के समुदायों और देश को लूर्द की माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा में सौंपते हुए खुशी खुशी अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापालियो चौदवी ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन 27 सितंबर 2026 को लूर्द के मरियम तीर्थ में पवित्र यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा, आज आप इस धन्य भूमि में खड़ा होते हैं जिसने बहुत सारी कृपाओं को पाया है। यह तीर्थ विश्वास की लौ को आपके घरों और पल्लियों में प्रज्वलित करे। आप लूर्द की सांत्वना को अपने पड़ोसियों, प्रियजनों और पूरे फ्रांस के लोगों के लिए लेकर जाएं। संत पापा ने रविवारीय धर्म विधि हेतु निर्धारित पाठों के आधार पर चिंतन करते हुए कहा, हम कुमारी मरियम के द्वारा संत बेरनदित को दिए गए केंद्रीय संदेश का आज के पाठों में स्पर्श होता पाते हैं। मन परिवर्तन हेतु बुलावा जो हमारे लिए कोमल और आवश्यक दोनों है। सुसमाचार में यीशु दुख की गहरी सच्चाई से हृदयों को देखते हैं जो अपने में बंद हैं। तुमने पश्चाताप नहीं किया क्यों? यह यीशु के हृदय को घायल करता है, क्योंकि ईश्वर अपने संतानों को खोना नहीं चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवन पाएं, अपनी आंखें खोलें और उनकी ओर लौटें। पश्चाताप करने का अर्थ उस मार्ग का परित्याग करना जिसमें हम खो गए थे और जीवन की ओर लौटना तथा अपने हृदय को उस खुशी के लिए खोलना जो हम में कभी खत्म नहीं होती है। संत पापा लियो ने कहा कि यीशु हमें सीधे तौर पर पश्चाताप करने हेतु निमंत्रण देते हैं। इसके बारे में संत लूकस हमें कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। इसके साथ ही वे हमारे दृष्टिकोण को भौतिक जीवन से परे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि इस जीवन की खुशी हमारे लिए क्षण भंगुर और अस्थायी है, जो कभी कभी बहुतों की पहुंच से परे होती है, जबकि सच्ची खुशी आशा में सबों के लिए प्रतिज्ञा की गई है और हमें अपने प्रयासों और चुनावों में उसी खुशी को खोजने की जरूरत है। क्या कुंवारी मरियम ने संत बेरनदित से यह नहीं कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी प्रदान करने की प्रतिज्ञा नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया में।
2: La vie éternelle est une promesse solide, certain, que le Seigneur nous fait.
1: मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, वास्तव में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमारे लिए ईश्वर की ओर से की जाती है। संत पापा ने कहा, उसे उन्होंने पहले ही अपने क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए प्राप्त किया है, और बपतिस्मा की कृपा द्वारा वे हर दिन उसे हमारे जीवन की परिपूर्णता में लाते हैं। यह हमारी पहुंच के अंदर है, लेकिन हमें स्वतंत्रता में इसका स्वागत करने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है, चूंकि प्रेम के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। प्रेम के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ख्रीस्त को हाँ कहने के लिए करें, माता मरियम की भांति उनकी कृपा में आश्रित होते हुए। संत पापा ने कहा कि हम उसी आवश्यक परिवर्तन के लिए बुलावा को पाते हैं जिसे मरियम ने यहाँ घोषित किया, पश्चाताप पश्चाताप पश्चाताप। वे इसे तीन बार दोहराती हैं। वे बेरनादेत को इसे कुछ विशेष कार्य में करने को कहती हैं, क्योंकि यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए भी जरूरी है, एक दुनिया के लिए जो अपने में भटक रही है। अतः मानव के हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता है जो स्वयं से शुरू होता है। पश्चाताप प्रेम का कार्य है जो मानव परिवार में एकात्मकता से किया जाता है, संत पापा ने कहा। यह ईश्वर के प्रति प्रेम का कार्य है, क्योंकि हम अपने पापों के कारण उनके हृदय के घावों की चंगाई करने की चाह रखते हैं। यह उन भाई बहनों के लिए प्रेम का कार्य है जो मन फिराव के आह्वान की ओर ध्यान नहीं देते हैं और पापों के कारण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिक विकास हेतु हमें अपने गलतियों को पहचानने की आवश्यकता है, संत पापा लियो ने कहा कि हमारी माता हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी प्रार्थना और पश्चाताप हमें बड़ी आशा से भर देते हैं। कुमारी मरियम हमारे विचारों और हृदयों में परिवर्तन लाती हैं, हमें शांति प्रदान करती हैं। बीमारों की माता के प्रेम और प्रार्थना के द्वारा हम विश्वास के साथ भविष्य की ओर यात्रा करें। आप दुनिया के तूफानों से भयभीत ना हों, क्योंकि ईश्वर की पवित्र माता आपकी यात्रा की देखरेख करती हैं। वह कलिसिया को अपनी कोमल छांव तले रखती हैं, जैसे कि चमकता हुआ भोर का तारा पद चिन्हों के लिए मार्गदर्शक बनता है, जिससे खुशी में वे अपने पुत्र यीशु के संग आपको नया जीवन प्रदान कर सकें।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है आमीन।
1: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: भरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे,
1: क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन।
0: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का।

0: श्रोताओं, संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरिति की यात्रा के अंतिम पड़ाव फ्रांस के शहर मेट्स में हैं। संत पापा लियो 14वें ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द की अपनी यात्रा का समापन मरियम तीर्थस्थल के बीचों बीच मोमबत्तियों के साथ निकाले गए जुलूस से किया। संत पापा विश्वासियों के बीच एक तीर्थ यात्री के तौर पर जुलूस में शामिल हुए। यह समारोह मसाबील के ग्रोटो के पास शुरू हुआ, ठीक उसी जगह जहां संत पापा लियो 14वें ने पिछले दिन लूर्द की अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी। इसके बाद जुलूस खुले मैदान से होकर आगे बढ़ा, जिसके आगे ताज पहने कुंवारी मरिया की रोशनी वाली मूर्ति थी। जुलूस के दौरान सुख के भेद पर मनन किया गया और फ्रेंच के साथ साथ इटालियन, इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं में प्रणाम मरिया प्रार्थना की गई। जुलूस के साथ संत पापा धीरे धीरे रोजरी के महागिरजाघर के सामने वाले आंगन की ओर बढ़े। संत पापा ने बीमारों को संबोधित कर कहा, प्यारे बीमार भाइयों और बहनों, इस पूरी सच्चाई को महसूस करने के लिए यहाँ आना और आपके साथ इस जुलूस में शामिल होना सच में बहुत जरूरी है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा, आज शाम आइए हम अपनी नजरें मरियम पर टिकाएं, जो इतनी महिमामयी और साथ ही मानवीय है, और उन्हें हमें उस ईश्वर की ओर ले जाने दें जो विजयी है। आप फ्रांस और दुनिया भर से रोशनी के इस जोश भरे और शांतिपूर्ण जुलूस में शामिल होने आए हैं। आइए हम अपनी सबसे प्यारी और जरूरी इच्छाओं को लेकर उन्हें माता मरियम के सामने रखें। हे निर्मल कुंवारी माता, आज शाम हमारे हाथों में जो रोशनी है वह हमारे जीवन में कभी ना बुझे, बल्कि यह हमारे भविष्य को रोशनी करे और हमें आज ही अनंत जीवन के वादों की ओर ले जाए। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दिया। संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन मेट्स में रॉबर्ट सुमन कॉन्फ्रेंस सेंटर में विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ एक बैठक की। संत पापा लियो 14वें की मौजूदगी में फ्रांस के धार्मिक नेताओं ने बातचीत, भाईचारे, मेल मिलाप और शांति की अपील करते हुए पूरे मानव परिवार की एक साथ सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया। यह अपील तीन संकल्पों के साथ समाप्त होती है, लगातार और गंभीर बातचीत करना, युवा पीढ़ियों को एक दूसरे की परंपराओं के बारे में सिखाना और न्याय तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल समय में भी एकजुट होकर खड़े रहना। अपने संबोधन में संत पापा लियो 14वें ने यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक आदरणीय शुमन की विरासत को याद किया। संत पापा ने कहा, आज मैं मेट्स में आपके बीच खड़े होकर खुशी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के गहरे एहसास के साथ यह कह रहा हूँ, मेट्स सीमाओं और रास्तों के मिलन का शहर है और यह जगह रॉबर्ट शुमन सेंटर है, जिनका नाम यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक के नाम पर रखा गया है। आस्था और पक्के इरादे वाले इस व्यक्ति ने पुरानी बंटवारे वाली लकीरों को पूरे यूरोप के लिए उम्मीद की पुलों में बदलना सीखा और वे विविधता में एकता के सच्चे दूत बने। संत पापा लियो ने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रातेली तुत्ती और मित्रता एवं शांति स्थापित करने के लिए धर्मों के बीच बातचीत के उनके आह्वान को याद किया। संत पापा ने कहा, संवाद हमारी पहचान को कम नहीं करता, बल्कि इसे दूसरे की विविधता के सामने खोलकर सरलता और सच्चाई के साथ व्यक्त करता है। संवाद मुलाकात की एक कला है जिसकी हमारी दुनिया को बहुत जरूरत है, क्योंकि यह आक्रामकता और हिंसा के विपरीत है। संत पापा ने कहा, हिंसा या उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए ईश्वर का नाम लेना उनके नाम को अपवित्र करना है। मानवीय गरिमा को विकृत करने वाली कोई भी चीज ईश्वर से प्रेरित होने का दावा नहीं कर सकती। संत पापा ने सभी से अपील की कि वे ऐसी धार्मिक बातचीत में शामिल हों जो दिलों और शब्दों से हथियार हटाने का आह्वान करती हो। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन का रक्षक है, क्योंकि वे जीवन के पवित्र मूल्य को मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों का अच्छा असर तब दिखता है जब उन्हें मानने वाले सबसे कमजोर और नाजुक लोगों के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने मेट्स में जमा हुए धार्मिक प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि कैथोलिक कलीसिया उन सभी लोगों को सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की जिम्मेदारी से तलाश करने वाले सफर के साथी मानती है। ईश्वर की असीम अच्छाई और ज्ञान हमारे साथ रहे और हमें उनके बच्चों और एक दूसरे के भाई बहनों के तौर पर और भी बेहतर ढंग से जीना सिखाए। इसलिए हम चाहे कहीं भी रहें, हम शांति के निर्माता बने और उस उम्मीद के गवाह बने जो हमारी दुनिया में लगातार बढ़ती रहती है।
1: फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन पोप लियो 14वें ने मेट्स के रॉबर्ट शुमान सम्मेलन केंद्र में शांति और एकता के लिए यूरोप के मूल में विषय वस्तु पर एक सभा में भाग लिया। सभा में संत पापा का स्वागत धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जॉन मार्क एवेलिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने किए।
2: मेडम मिस्यू एन वो ग्रेट्स एट क्वालिटे ट्रेस इंपेर सोये ले बिएनवेनू अ मेट्स।
1: यूरोप को समर्पित एक वीडियो प्रस्तुति एवं यूरोपीय राष्ट्रगान प्रदर्शन के बाद संत पापा ने उपस्थित राष्ट्रपति, नागर समाज एवं विभिन्न धार्मिक नेताओं को संबोधित कर कहा, मुझे इस ऐतिहासिक शहर में जो महाद्वीप के बीचों बीच एक चौराहा है, यूरोप की जड़ों के लिए शांति और एकता शीर्षक इस मीटिंग में आकर खुशी हो रही है। मेरे लिए कहे गए अच्छे शब्दों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मीटिंग का शीर्षक बेशक आदरणीय रॉबर्ट शुमान से प्रेरित है, जिन्हें आज हम इस केंद्र में सम्मानित करना चाहते हैं, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर है और मोरसेले जहां वे कई सालों तक रहे, जिसका उन्होंने कई सालों तक राष्ट्रीय असेंबली में प्रतिनिधित्व किया और जहां उन्हें दफनाया गया। 19वीं और 20वीं सदी में अपनी सभी मुश्किलों और परेशानियों के साथ इसी इलाके से उन्होंने 9 मई 1950 के अपने मशहूर घोषणा के द्वारा आज और कल के यूरोप को आकार देने में मदद करने की प्रेरणा ली। यह दस्तावेज यूरोपीय महाद्वीप में मेल मिलाप और एकता के लिए उनके जीवन भर की प्रतिबद्धता की शुरुआत और अंत में दोनों को दिखाता है। यूरोप की जड़ों से शुरू होकर वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य की ओर काल्पनिक यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए पोप ने कहा, हम खुद से पूछें, रॉबर्ट शुमान इस भूमि के इतिहास से कैसे बने जिसके वे बेटे थे और उन्होंने आज के यूरोप को बनाने में कैसे अहम भूमिका निभाई, जिन्हें इसके संस्थापक पिताओं में से एक माना जाने लगा। यूरोप को परिभाषित करना हमेशा मुश्किल रहा है, चाहे हम इसके आज की बात कर रहे हों या बीते कल की। हेलेनिस्टिक सभ्यता, रोमन साम्राज्य और फिर ख्रिस्त धर्म के फैलने से ऐतिहासिक समय में यूरोप ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, समय के साथ जर्मनिक एवं स्लाविक संस्कृतियों सहित नए संस्कृतियों को मिलाया, जिससे यह और भी बड़े इलाकों में फैल गया। इसलिए यूरोप को भौगोलिक सच्चाई से पहले एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सच्चाई के तौर पर समझना चाहिए। सदियों से इसके स्वरूप एवं परिभाषा में बदलाव आया है। विकास बड़े संकटों एवं नए शुरुआतों के दौर से गुजरी है, लेकिन इसके लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में एक बात लगातार देखी जा सकती है, वह यह है कि यूरोप तब फला फूला और तरक्की की जब वह अपने अतीत की सबसे अच्छी बातों का इस्तेमाल कर पाया और दूसरों से मिलकर उन्हें नए एवं रचनात्मक तरीकों से फिर बनाया। सच तो ये है कि यूरोपीय सभ्यता भी सदियों पुराने मुलाकातों का नतीजा है, भले ही ये हमेशा आसान ना रहे हों। संत पापा ने कहा, हम इस लंबे इतिहास को समझने के लिए यूरोप के दूसरे संस्थापकों को अनदेखा नहीं कर सकते। संत बेनेडिक्ट, जिन्हें संत पापा पॉल 6वें ने 1964 में यूरोप का संरक्षक घोषित किया, उन्हें शांति के दूत, एकता के शिल्पकार और सभ्यता के शिक्षक कहा। गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों एवं विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, अस्पताल और दवा, वास्तुकला एवं इंजीनियरिंग, विज्ञान का विकास, कानून और शहरों एवं राज्यों का गठन। यूरोप में बहुत कुछ संत बेनेडिक्ट एवं उनके मठवासियों के गहरे प्रभाव से आया है। इस मठवासी परंपरा के बिना यूरोपीय सभ्यता जैसे हम जानते हैं वैसे नहीं होती। यहाँ मेट्स में कोई भी भाईचारे, मेलजोल और बंटवारे की बेनेडिक्टाइन भावना को महसूस कर सकता है। यहीं से ग्रेगोरियन मंत्र पूरे क्षेत्र में फैला, जिससे पूरे महाद्वीप में मेलजोल और सुंदरता आई। संत पापा ने ख्रिस्ते धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इसलिए हम यूरोप की बात ख्रिस्ते धर्म का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। रॉबर्ट शुमान ने इसे तब समझा जब उन्होंने लिखा, ख्रिस्ते धर्म ने सभी लोगों को स्वभाव से बराबरी की शिक्षा दी, साथ ही ईश्वर की संतान के रूप में एक ही मसीह द्वारा बचाए गए बिना किसी जाति, रंग, वर्ग या पेशे के भेदभाव के। इसने काम की निष्ठा और उसे करने की सभी की जिम्मेदारी सिखाई। इसने उन आंतरिक मूल्यों की अहमियत को पहचाना जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। प्रेम और उदारता के स्वाभाविक नियम ने हर इंसान को हमारा पड़ोसी बनाया और इसी पर ख्रिस्त जगत में सामाजिक रिश्ते बने हैं। संत पापा ने आधुनिक यूरोप के दूसरे संस्थापक के रूप में अल्चीते दी गास्परी का नाम लिया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आम यूरोपीय विरासत या साझा नैतिक नजरिया है जो मानव और इसकी जिम्मेदारी को ऊपर उठाता है, जिसमें सुसमाचारी भाईचारे की भावना, पुरखों से मिले कानून के लिए सम्मान, सदियों से बेहतर हुए सुंदरता के लिए प्यार और हजारों सालों के अनुभव से और तेज हुई सच्चाई एवं न्याय के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। सिर्फ धार्मिक मानदंड से बढ़कर, संत पापा ने कहा, यूरोप का ख्रिस्त धर्म के प्रति कर्ज पहचानने से हमें यह और स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है कि ऊपर वाले के प्रति खुलापन हमेशा मानव का एक जरूरी हिस्सा और सभ्यता का एक जीता जागता जरिया होता है। इस बारे में संत पापा ने यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के अनुच्छेद 17 को बहुत महत्वपूर्ण बताया, जो कलीसियाओं के साथ एक खुली, पारदर्शी एवं नियमित बातचीत की बात करता है और यह सदस्य देशों में कलीसिया को जो स्थान मिलता है उसका सम्मान करता है और उस पर कोई बुरा असर नहीं डालता। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का सही अर्थ बतलाते हुए पोप ने कहा कि यह सभी पार्टियों के बीच असली सहयोग, राष्ट्रीय एवं यूरोपीय अधिकारियों द्वारा कलीसिया की स्वायत्तता का सम्मान और उनके संगठन, अभिव्यक्ति एवं उपासना की आज़ादी को बढ़ावा देने को भी जरूरी मानता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन मूल्यों के स्रोत पर लौटना होगा जो नागरिक समाज को मजबूत करते हैं, यानी मानव के अधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन के वैश्विक मूल्य। आज के बहुसांस्कृतिक माहौल में इन मूल्यों के वैश्विक स्वभाव को सुदृढ़ करना जो उनके बने रहने के लिए जरूरी है। इसके लिए यूरोप की जड़ों को फिर से खोजना और दूसरों के साथ बातचीत के लिए खुलापन दोनों की आवश्यकता है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक जरूरत है अगर हमें मानव के केंद्र को फिर से खोजना है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति एवं एकता जैसे शब्दों को असली अर्थ देना है। इसी कारण से पोप फ्रांसिस का निमंत्रण महत्वपूर्ण है, जिसमें यूरोप की असलियत की जटिलता को उसकी परंपराओं और संवेदनशीलता की सारी समृद्धि में समझना, साथ ही एक रचनात्मक तालमेल बनाने की कोशिश करना जो शक्ति के दिखावे से मुक्त हो। अपनी जड़ों की ओर लौटने और फिर बातचीत करने की ये दो गतिविधियां हमें अधिकारों और अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच सही संतुलन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने हमें हमेशा याद दिलाया है, कर्तव्यों की भावना अब अधिकारों की भावना से जुड़ा हुआ नहीं लगता, जिसका फल यह हो रहा है कि हर इंसान के अधिकारों का ध्यान नहीं दिया जाता है, कि वह एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिसमें उसके अधिकार और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों और समाज की आम भलाई से जुड़े होते हैं। ऐसे माहौल में संत पापा ने आप्रवासी संकट को उजागर करते हुए कहा, आज का यूरोप अब अपने लंबे इतिहास में एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है, जहां बहुत से पुरुष और महिलाएं युद्ध एवं जुल्म से भागकर या गरीबी एवं मुश्किलों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में महादेश में आ रहे हैं। संत पापा ने अप्रवासियों की मदद करने का समर्थन करते हुए कहा, किसी इंसान का स्वागत करने का मतलब है उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाना, उसे अपनी क्षमता, योग्यता एवं समझ को बढ़ाने का मौका देना और साथ ही घर के जीवन में शामिल होने का अवसर देना। शुमान का मानना था कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय कानून के विपरीत कोई एक देश जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता, बल्कि यह पक्ता सुंद सर्वदा अनुबंध का पालन आवश्यक के वैश्विक रूप से माने गए सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को इस इलाके के खास कानूनी ढांचे से सुरक्षित रखा गया है जो वैटिकन एवं फ्रांस के बीच 1801 के समझौते के आधार पर राज्य और कातिक कलीसिया के बीच संबंधों को भी नियंत्रित करता है जो अभी भी लागू है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद देशों के बीच उनके रिश्तों में असली समानता पर जोर देते हैं और जो दबदबा की चाह का सबसे अच्छा इलाज है। आज लोगों और देशों के बीच रिश्ते तेजी से खराब होते जा रहे हैं। अपनी बात रखने की अहमियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बजाय लोग झूठ और धोखे की ढींग हाँक रहे हैं। ऐसी स्थिति में संत पापा ने यूरोप के प्रति अपनी उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा, यूरोप दूसरों के लिए सम्मान प्रकट करके इस चक्कर को तोड़ने में मदद कर सकता है जिसे उसने बढ़ाना और बनाए रखना सीखा है। पिछले 80 सालों में यूरोप ने अच्छी तरह से दिखाया है कि झगड़े के बजाय मुलाकात के जरिए अलग अलग राय, दावे और हितों को जाहिर करना मुमकिन है। शुमान हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा यथार्थवादी और साहसी होना चाहिए। यूरोप एक ही बार में नहीं बनेगा, ना ही निर्माण के किसी एक बड़ी योजना से बनेगा या ठोस कामयाबियों से बनेगा जो असल में स्वतंत्रता उत्पन्न करती है। हमें आगे बढ़ने की अपनी योग्यता पर कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए, तब भी जब हमारे कदम छोटे हों और लगभग किसी का ध्यान ना जाए। सब कुछ और तुरंत पाने की आज की चाहत यूरोपीय इतिहास और संस्कृति से मेल नहीं खाती, तो इसके बजाय हमें समय और सब्र की कीमत सिखाते हैं। छोटे छोटे कदमों से ही हम इस ठोस एकजुटता को जिंदा कर सकते हैं ताकि कोई भी अकेला या भुलाया गया महसूस ना करे। संत पापा ने युवाओं की विशेष याद की जिन्हें वर्तमान और भविष्य का यूरोप बनाने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने शुमान की बातों की याद दिलाते हुए कहा, एक मेल मिलाप वाले एकजुट और मजबूत यूरोप का यह विचार युवा पीढ़ी का नारा बन सकता है जो नफरत और डर से मुक्त मानवता की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जो अत्यधिक विभाजन के बाद एक बार फिर ख्रिस्ती भाईचारा को जीना सीख रही है। युवाओं से संत पापा ने कहा, अपने दिलों में, अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, स्कूलों और यूनिवर्सिटी में, अपने शहरों और देशों में और पूरे यूरोप में शांति को बढ़ावा देने का काम जिम्मेदारी से करने की हिम्मत रखें। हिंसा और जुल्म की सोच के आगे ना झुकें। हर पल जीवन से प्यार करें और भविष्य से नहीं डरें। परिवार शुरू करने से, बच्चों को दुनिया में लाने से, गर्भधारण से लेकर मौत तक हर इंसान की गरिमा की रक्षा करने से नहीं डरें। अपने समुदायों की भलाई के लिए, जिसमें राजनीतिक जुड़ाव भी शामिल है, बिना थके काम करने से नहीं घबराएं। समुदाय का निर्माण करने वाले बनें और आपके साथ यूरोप अपनी विरासत में मजबूती से जुड़ा हुआ फलता फूलता रहेगा और पूरी दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा। ईश्वर आपको इन कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें और पूरे यूरोप को आशीर्वाद एवं सुरक्षा दें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरिती की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का।

0: श्रोताओं, संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरिति की यात्रा के अंतिम पड़ाव फ्रांस के शहर मेट्स में हैं। संत पापा लियो 14वें ने अपनी प्रेरिति की यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द की अपनी यात्रा का समापन मरियम तीर्थस्थल के बीचों बीच मोमबत्तियों के साथ निकाले गए जुलूस से किया। संत पापा विश्वासियों के बीच एक तीर्थ यात्री के तौर पर जुलूस में शामिल हुए। यह समारोह मसाबील के ग्रोटो के पास शुरू हुआ, ठीक उसी जगह जहां संत पापा लियो 14वें ने पिछले दिन लूर्द की अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी। इसके बाद जुलूस खुले मैदान से होकर आगे बढ़ा, जिसके आगे ताज पहने कुंवारी मरिया की रोशनी वाली मूर्ति थी। जुलूस के दौरान सुख के भेद पर मनन किया गया और फ्रेंच के साथ साथ इटालियन, इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं में प्रणाम मरिया प्रार्थना की गई। जुलूस के साथ संत पापा धीरे धीरे रोजरी के महागिरजा घर के सामने वाले आंगन की ओर बढ़े। संत पापा ने बीमारों को संबोधित कर कहा, प्यारे बीमार भाइयों और बहनों, इस पूरी सच्चाई को महसूस करने के लिए यहाँ आना और आपके साथ इस जुलूस में शामिल होना सच में बहुत जरूरी है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा, आज शाम आइए हम अपनी नजरें मरियम पर टिकाएं, जो इतनी महिमामयी और साथ ही मानवीय है, और उन्हें हमें उस ईश्वर की ओर ले जाने दें जो विजयी है। आप फ्रांस और दुनिया भर से रोशनी के इस जोश भरे और शांतिपूर्ण जुलूस में शामिल होने आए हैं। आइए हम अपनी सबसे प्यारी और जरूरी इच्छाओं को लेकर उन्हें माता मरियम के सामने रखें। हे निर्मल कुंवारी माता, आज शाम हमारे हाथों में जो रोशनी है वह हमारे जीवन में कभी ना बुझे, बल्कि यह हमारे भविष्य को रोशनी करे और हमें आज ही अनंत जीवन के वादों की ओर ले जाए। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दिया। संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन मेट्स में रॉबर्ट सुमन कॉन्फ्रेंस सेंटर में विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ एक बैठक की। संत पापा लियो 14वें की मौजूदगी में फ्रांस के धार्मिक नेताओं ने बातचीत, भाईचारे, मेलमिलाप और शांति की अपील करते हुए पूरे मानव परिवार की एक साथ सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया। यह अपील तीन संकल्पों के साथ समाप्त होती है, लगातार और गंभीर बातचीत करना, युवा पीढ़ियों को एक दूसरे की परंपराओं के बारे में सिखाना और न्याय तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल समय में भी एकजुट होकर खड़े रहना। अपने संबोधन में संत पापा लियो 14वें ने यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक आदरणीय शुमन की विरासत को याद किया। संत पापा ने कहा, आज मैं मेट्स में आपके बीच खड़े होकर खुशी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के गहरे एहसास के साथ यह कह रहा हूँ, मेट्स सीमाओं और रास्तों के मिलन का शहर है और यह जगह रॉबर्ट शुमन सेंटर है, जिनका नाम यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक के नाम पर रखा गया है। आस्था और पक्के इरादे वाले इस व्यक्ति ने पुरानी बंटवारे वाली लकीरों को पूरे यूरोप के लिए उम्मीद की पुलों में बदलना सीखा और वे विविधता में एकता के सच्चे दूत बने। संत पापा लियो ने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रातेली तुत्ती और मित्रता एवं शांति स्थापित करने के लिए धर्मों के बीच बातचीत के उनके आह्वान को याद किया। संत पापा ने कहा, संवाद हमारी पहचान को कम नहीं करता, बल्कि इसे दूसरे की विविधता के सामने खोलकर सरलता और सच्चाई के साथ व्यक्त करता है। संवाद मुलाकात की एक कला है जिसकी हमारी दुनिया को बहुत जरूरत है, क्योंकि यह आक्रामकता और हिंसा के विपरीत है। संत पापा ने कहा, हिंसा या उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए ईश्वर का नाम लेना उनके नाम को अपवित्र करना है। मानवीय गरिमा को विकृत करने वाली कोई भी चीज ईश्वर से प्रेरित होने का दावा नहीं कर सकती। संत पापा ने सभी से अपील की कि वे ऐसी धार्मिक बातचीत में शामिल हों जो दिलों और शब्दों से हथियार हटाने का आह्वान करती हो। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन का रक्षक है, क्योंकि वे जीवन के पवित्र मूल्य को मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों का अच्छा असर तब दिखता है जब उन्हें मानने वाले सबसे कमजोर और नाजुक लोगों के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने मेट्स में जमा हुए धार्मिक प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि कैथोलिक कलीसिया उन सभी लोगों को सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की जिम्मेदारी से तलाश करने वाले सफर के साथी मानती है। ईश्वर की असीम अच्छाई और ज्ञान हमारे साथ रहे और हमें उनके बच्चों और एक दूसरे के भाई बहनों के तौर पर और भी बेहतर ढंग से जीना सिखाए। इसलिए हम चाहे कहीं भी रहें, हम शांति के निर्माता बने और उस उम्मीद के गवाह बने जो हमारी दुनिया में लगातार बढ़ती रहती है।
1: फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन पोप लियो 14वें ने मेट्स के रॉबर्ट शुमान सम्मेलन केंद्र में शांति और एकता के लिए यूरोप के मूल में विषय वस्तु पर एक सभा में भाग लिया। सभा में संत पापा का स्वागत धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जॉन मार्क एवेलिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन ने किए।
2: Mesdames, messieurs, en vos grâces et qualités, très Saint-Père, soyez le bienvenu à Metz.
1: यूरोप को समर्पित एक वीडियो प्रस्तुति एवं यूरोपीय राष्ट्रगान प्रदर्शन के बाद संत पापा ने उपस्थित राष्ट्रपति, नागर समाज एवं विभिन्न धार्मिक नेताओं को संबोधित कर कहा, मुझे इस ऐतिहासिक शहर में जो महाद्वीप के बीचों बीच एक चौराहा है, यूरोप की जड़ों के लिए शांति और एकता शीर्षक इस मीटिंग में आकर खुशी हो रही है। मेरे लिए कहे गए अच्छे शब्दों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मीटिंग का शीर्षक बेशक आदरणीय रॉबर्ट शुमान से प्रेरित है, जिन्हें आज हम इस केंद्र में सम्मानित करना चाहते हैं, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर है और मोरसेले जहां वे कई सालों तक रहे, जिसका उन्होंने कई सालों तक राष्ट्रीय असेंबली में प्रतिनिधि

हम खुद से पूछें, रॉबर्ट शुमान इस भूमि के इतिहास से कैसे बने जिसके वे बेटे थे, और उन्होंने आज के यूरोप को बनाने में कैसे अहम भूमिका निभाई, जिन्हें इसके संस्थापक पिताओं में से एक माना जाने लगा। यूरोप को परिभाषित करना हमेशा मुश्किल रहा है, चाहे हम इसके आज की बात कर रहे हों या बीते कल की। हेलेनिस्टिक सभ्यता, रोमन साम्राज्य और फिर ख्रिस्त धर्म के फैलने से ऐतिहासिक समय में यूरोप ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, समय के साथ जर्मनिक एवं स्लाविक संस्कृतियों सहित नए संस्कृतियों को मिलाया, जिससे यह और भी बड़े इलाकों में फैल गया। इसलिए यूरोप को भौगोलिक सच्चाई से पहले एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सच्चाई के तौर पर समझना चाहिए। सदियों से इसके स्वरूप एवं परिभाषा में बदलाव आया है। विकास बड़े संकटों एवं नए शुरुआतों के दौर से गुजरी है, लेकिन इसके लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में एक बात लगातार देखी जा सकती है, वह यह है कि यूरोप तब फला फूला और तरक्की की जब वह अपने अतीत की सबसे अच्छी बातों का इस्तेमाल कर पाया और दूसरों से मिलकर उन्हें नए एवं रचनात्मक तरीकों से फिर बनाया। सच तो ये है कि यूरोपीय सभ्यता भी सदियों पुराने मुलाकातों का नतीजा है, भले ही ये हमेशा आसान ना रहे हों। संत पापा ने कहा, हम इस लंबे इतिहास को समझने के लिए यूरोप के दूसरे संस्थापकों को अनदेखा नहीं कर सकते। संत बेनेडिक्ट, जिन्हें संत पापा पॉल छठवें ने 1964 में यूरोप का संरक्षक घोषित किया, उन्हें शांति के दूत, एकता के शिल्पकार और सभ्यता के शिक्षक कहा। गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों एवं विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, अस्पताल और दवा, वास्तुकला एवं इंजीनियरिंग, विज्ञान का विकास, कानून और शहरों एवं राज्यों का गठन, यूरोप में बहुत कुछ संत बेनेडिक्ट एवं उनके मठवासियों के गहरे प्रभाव से आया है। इस मठवासी परंपरा के बिना यूरोपीय सभ्यता जैसे हम जानते हैं वैसे नहीं होती। यहाँ मिर्ट्स में कोई भी भाईचारे, मेल जोल और बंटवारे की बेनेडिक्टाइन भावना को महसूस कर सकता है। यहीं से ग्रेगोरियन मंत्र पूरे क्षेत्र में फैला, जिससे पूरे महाद्वीप में मेल जोल और सुंदरता आई। संत पापा ने ख्रिस्त धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इसलिए हम यूरोप की बात ख्रिस्त धर्म का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। रॉबर्ट शुमान ने इसे तब समझा जब उन्होंने लिखा, ख्रिस्त धर्म ने सभी लोगों को स्वभाव से बराबरी की शिक्षा दी, साथ ही ईश्वर की संतान के रूप में एक ही मसीह द्वारा बचाए गए, बिना किसी जाति, रंग, वर्ग या पेशे के भेदभाव के। इसने काम की निष्ठा और उसे करने की सभी की जिम्मेदारी सिखाई। इसने उन आंतरिक मूल्यों की अहमियत को पहचाना जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। प्रेम और उदारता के सार्वभौमिक नियम ने हर इंसान को हमारा पड़ोसी बनाया, और इसी पर ख्रिस्त जगत में सामाजिक रिश्ते बने हैं। संत पापा ने आधुनिक यूरोप के दूसरे संस्थापक के रूप में अलचीते दी गास्परी का नाम लिया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आम यूरोपीय विरासत या साझा नैतिक नजरिया है जो मानव और इसकी जिम्मेदारी को ऊपर उठाता है, जिसमें सुसमाचारी भाईचारे की भावना, पुरखों से मिले कानून के लिए सम्मान, सदियों से बेहतर हुए सुंदरता के लिए प्यार और हजारों सालों के अनुभव से और तेज हुई सच्चाई एवं न्याय के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। सिर्फ धार्मिक मानदंड से बढ़कर, संत पापा ने कहा, यूरोप का ख्रिस्त धर्म के प्रति कर्ज पहचानने से हमें यह और स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है कि ऊपर वाले के प्रति खुलापन हमेशा मानव का एक जरूरी हिस्सा और सभ्यता का एक जीता जागता जरिया होता है। इस बारे में संत पापा ने यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के अनुच्छेद 17 को बहुत महत्वपूर्ण बताया, जो कलीसियाओं के साथ एक खुली, पारदर्शी एवं नियमित बातचीत की बात करता है, और यह सदस्य देशों में कलीसिया को जो स्थान मिलता है उसका सम्मान करता है और उस पर कोई बुरा असर नहीं डालता। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का सही अर्थ बतलाते हुए पोप ने कहा कि यह सभी पार्टियों के बीच असली सहयोग, राष्ट्रीय एवं यूरोपीय अधिकारियों द्वारा कलीसिया की स्वतंत्रता का सम्मान और उनके संगठन, अभिव्यक्ति एवं उपासना की आज़ादी को बढ़ावा देने को भी जरूरी मानता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन मूल्यों के स्रोत पर लौटना होगा जो नागरिक समाज को मजबूत करते हैं, यानी मानव के अधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन के वैश्विक मूल्य। आज के बहुसांस्कृतिक माहौल में इन मूल्यों के वैश्विक स्वभाव को सुदृढ़ करना जो उनके बने रहने के लिए जरूरी है।
इसके लिए यूरोप की जड़ों को फिर से खोजना और दूसरों के साथ बातचीत के लिए खुलापन दोनों की आवश्यकता है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक

जरूरत है अगर हमें मानव के केंद्र को फिर से खोजना है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति एवं एकता जैसे शब्दों को असली अर्थ देना है। इसी कारण से पोप फ्रांसिस का निमंत्रण महत्वपूर्ण है, जिसमें यूरोप की असलियत की जटिलता को उसकी परंपराओं और संवेदनशीलता की सारी समृद्धि में समझना, साथ ही एक रचनात्मक तालमेल बनाने की कोशिश करना जो शक्ति के दिखावे से मुक्त हो। अपनी जड़ों की ओर लौटने और फिर बातचीत करने की ये दो गतिविधियां हमें अधिकारों और अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच सही संतुलन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने हमें हमेशा याद दिलाया है, कर्तव्यों की भावना अब अधिकारों की भावना से जुड़ा हुआ नहीं लगता, जिसका फल यह हो रहा है कि हर इंसान के अधिकारों का ध्यान नहीं दिया जाता है, कि वह एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिसमें उसके अधिकार और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों और समाज की आम भलाई से जुड़े होते हैं। ऐसे माहौल में संत पापा ने आप्रवासी संकट को उजागर करते हुए कहा, आज का यूरोप अब अपने लंबे इतिहास में एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है, जहां बहुत से पुरुष और महिलाएं युद्ध एवं जुल्म से भागकर या गरीबी एवं मुश्किलों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में महादेश में आ रहे हैं। संत पापा ने अप्रवासियों की मदद करने का समर्थन करते हुए कहा, किसी इंसान का स्वागत करने का मतलब है उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाना, उसे अपनी क्षमता, योग्यता एवं समझ को बढ़ाने का मौका देना और साथ ही घर के जीवन में शामिल होने का अवसर देना। शुमान का मानना था कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय कानून के विपरीत कोई एक देश जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता, बल्कि यह पक्ता सुंत सर्वदा अनुबंध का पालन आवश्यक के वैश्विक रूप से माने गए सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को इस इलाके के खास कानूनी ढांचे से सुरक्षित रखा गया है, जो वैटिकन एवं फ्रांस के बीच 1801 के समझौते के आधार पर राज्य और कैथोलिक कलीसिया के बीच संबंधों को भी नियंत्रित करता है, जो अभी भी लागू है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद देशों के बीच उनके रिश्तों में असली समानता पर जोर देते हैं और जो दबदबा की चाह का सबसे अच्छा इलाज है। आज लोगों और देशों के बीच रिश्ते तेजी से खराब होते जा रहे हैं, अपनी बात रखने की अहमियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके बजाय लोग झूठ और धोखे की ढींग हाँक रहे हैं। ऐसी स्थिति में संत पापा ने यूरोप के प्रति अपनी उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा, यूरोप दूसरों के लिए सम्मान प्रकट करके इस चक्कर को तोड़ने में मदद कर सकता है, जिसे उसने बढ़ाना और बनाए रखना सीखा है। पिछले 80 सालों में यूरोप ने अच्छी तरह से दिखाया है कि झगड़े के बजाय मुलाकात के जरिए अलग अलग राय, दावे और हितों को जाहिर करना मुमकिन है। शुमान हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा यथार्थवादी और साहसी होना चाहिए। यूरोप एक ही बार में नहीं बनेगा, ना ही निर्माण के किसी एक बड़ी योजना से बनेगा या ठोस कामयाबियों से बनेगा, जो असल में स्वतंत्रता उत्पन्न करती है। हमें आगे बढ़ने की अपनी योग्यता पर कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए, तब भी जब हमारे कदम छोटे हों और लगभग किसी का ध्यान ना जाए। सब कुछ और तुरंत पाने की आज की चाहत यूरोपीय इतिहास और संस्कृति से मेल नहीं खाती, इसके बजाय हमें समय और सब्र की कीमत सिखाते हैं। छोटे छोटे कदमों से ही हम इस ठोस एकजुटता को जिंदा कर सकते हैं, ताकि कोई भी अकेला या भुलाया गया महसूस ना करे। संत पापा ने युवाओं की विशेष याद की, जिन्हें वर्तमान और भविष्य का यूरोप बनाने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने शुमान की बातों की याद दिलाते हुए कहा, एक मेल मिलाप वाले एकजुट और मजबूत यूरोप का यह विचार युवा पीढ़ी का नारा बन सकता है, जो नफरत और डर से मुक्त मानवता की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जो अत्यधिक विभाजन के बाद एक बार फिर ख्रिस्ते भाईचारा को जीना सीख रही है। युवाओं से संत पापा ने कहा, अपने दिलों में, अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, स्कूलों और यूनिवर्सिटी में, अपने शहरों और देशों में और पूरे यूरोप में शांति को बढ़ावा देने का काम जिम्मेदारी से करने की हिम्मत रखें। हिंसा और जुल्म की सोच के आगे ना झुकें, हर पल जीवन से प्यार करें और भविष्य से नहीं डरें। परिवार शुरू करने से, बच्चों को दुनिया में लाने से, गर्भधारण से लेकर मौत तक हर इंसान की गरिमा की रक्षा करने से नहीं डरें। अपने समुदायों की भलाई के लिए, जिसमें राजनीतिक जुड़ाव भी शामिल है, बिना थके काम करने से नहीं घबराएं। समुदाय का निर्माण करने वाले बने और आपके साथ यूरोप अपनी विरासत में मजबूती से जुड़ा हुआ फलता फूलता रहेगा और पूरी दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा।
ईश्वर आपको इन कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें और पूरे यूरोप को आशीर्वाद एवं सुरक्षा दें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।